दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक।